हथेलियों को अच्छी तरह मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठा सो अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाते हैं, जैसे कि अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती हैं, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है

0: एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना, जब मनुष्य वो जाता है, मरने जाता है, तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं, कि एक अच्छा कर्म परमात्मा के का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, ये किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुधैव कुटुम्बकम्, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत। सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा, कहते हैं ये मूक प्राणी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है, कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो। यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं, पूज्य गुरुदेव महादानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की, रात भर सेवा की, तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मतलब वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा ना, ईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत त्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य सुदिनम। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो तुम्हारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शांति।
1: कोशिश करेंगे,
2: ठीक है।
1: So you want me to appeal to my... Okay.
2: In America.
1: Okay.
2: To Yoga and Delhi Foundation in Austria.
1: Okay. Yoga and?
2: Delhi Life Foundation, Austria or India?
1: Okay.
2: India. Yoga and Delhi Life
1: Yoga
2: Foundation.
1: In?
2: Yoga in Delhi Life.
1: Yoga in Delhi Life.
2: Foundation.
1: In Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor. Let's donate to Yoga in Delhi Life. Yoga in Delhi Life Foundation. It has a branch office in Delhi. And all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me and we'll find a way to get the money and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
2: In rupees?
1: Yes.
2: Thank you. Ke dollar?
1: Did I say?
2: Among us, there is sitting one Brahmarishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, Nepal ke liye. So, Brahmarishi ji aaiye aap, and please sing one bhajan. Darad dukh dur ho jaye, daya ho jaye. Misri Lal ji, Brahmarishi, P. Thawla, Nagore.
3: नागौर दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण सभी सज्जनों 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे 84 लाख जोड़ में 27 लाख घासपूस 9 लाख जलपान 11 लाख ईट पतंग 10 लाख पखेरु 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोन है 4 लाख मान का जोन के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है 3,99,999 मनुष्य है लेकिन बिना सिंह पूछ के हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे बिना सिंह पूछ के जो मान लो ज्ञान नहीं है विवेक नहीं है दया नहीं है समा नहीं है शीलता नहीं है शुचिता नहीं है समता नहीं है तो मनुष्य कहना चलना लायक नहीं है तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज सार्वभौम जगतगुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वर जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर, क्या जहां दया है कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है ये जीव आता है ना महाराज संसार के अंदर परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो आज भी जो है महात्मा नंद जी महाराज के मैं उनके सानिध्य में मेरे को मैं ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं क्या। तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता है, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मा नंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि महाराज श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहाँ जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहाँ बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। तू जान बूझे कोई पाप न करे, हो जाए तो पश्चाताप न करे, ये सब लीला उस ईश्वर की तू ध्यान।

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पश्चंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज धीरे के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवे क्या। जब परमात्मा की कृपा होगी जो

0: ओम शलपुरजी महादेव की जय। वादिदेवेश्वर महादेव की जय। श्रीदेव नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सदगुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर अनंतपुर जी गुरुदेव की जय। सदाशिवसमारंभं शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Srila Puriji Siddhapeetha Parampara.
1: Pozdrav Sri Alakpuriji Siddhapeetha Parampara.
0: मैं दंडवत प्रणाम से अभिलावित गुरुदेव हे सौलनेस विश्वगुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंदपुर जी।
1: मैं पोकोरने प्रणाम यहो स्वतोस्ति विश्वगुरु जीमो।
0: ओम नमो नारायण टू ऑल द सन्यासीज प्रेजेंट हियर।
1: अ ओम नमो नारायण všem přítomným sannyasinům।
0: हरिओम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू हु आर प्रेजेंट हियर एंड गुड मॉर्निंग आफ्टरनून एंड नाइट टू दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग थ्रू वेबकास्ट।
1: Hariom a dobrý večer vám všem, kdo jste tady, a možná dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer vám, kdo sledujete webcast.
0: How are you all?
1: Jak se máte?

अलख पुरी सा महादेव परम सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन।

श्री श्री देव पुरी सा महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय।

असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमद्यः पूर्णोशान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अलकपुरीजी महादेव की जय। देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।

श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण न श्रीमन नारायण नारायण।

श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण।

0: भगवान की
1: जय।
0: देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय।

0: प्रजाभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्य नमः। उमामहेश्वराभ्य नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्य नमः। शशिपुरन्द्राभ्य नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ श्रीबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीदीप नारायण भगवान की
1: जय। जयेश्वर महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट स्वामी महानंद
0: भगवान की जय।
1: सर्व ओम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमान स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज की
0: जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चल लोटा और भी ले लो दो चार।
1: हाँ। पर पुत्र चटम
2: जोधपुर संभाग में दो ही है पुत्र। एक ही लड़ा है।
1: हाँ बिलड़ा एक ही है लिरोपुर।
0: ॐ ऐं गमन्दा देवतानि धर्माणि ब्रह्मण्यासन देहेनाकः महिमाना शशन्दया पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय बृहस्वैनै नमो वयं विस्मरणाय कुर्महि सम्यक् कामान् कामकामाय मयं कामेश्वरो वेश्वरो ददातु। कुबेराय विश्वनाय महाराजाय महावृन्दवर्याश्चात् सार्वभौम सार्वयुषण दाता पृथ्वी समुद्र पर्यंत। लोटा एक एक और भी दे दो। आप लोटा लो और कुछ नहीं। महाराज आओ परिमन अवतारपुरी निरंजनपुरी जी। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षां ओम शांति पृथ्वी शांति रावा शांति औषधया शांति वनस्पति शांतिर विश्वे देवा शांति एव शांति सामा शांति।
3: गुड गुड।
0: हाँ मंगलेश मंगलेश
3: मंगलेश
0: मंगलेश प्लीज।
3: हाँ गुड
0: गुड। किचन किचन किचन
3: बस यही कर माला है।
0: हाँ ये माला
3: दीपक लगाओ।
0: हाँ बस ये दीपक को दूसरा कर। ये माला आपके उधर से माला उधर में
3: वो दो करो जाने भी नहीं।
0: हाँ और हाँ हाँ तो बड़ी हो जाएगी और बंधवा दो उसको करके बांध दे ये पकड़
3: लो।
0: ये नहीं बंद हो बेड़ी
1: छोड़ दो छोड़ दो।
0: तीन चार जने साथ में खड़े रह करके
1: दे दे
3: दे दे दे दे दे दे दे।
1: और माला भी उधर जोड़ो है।
0: एक माला दो लगाऊं
1: दो दो
0: ना ये भी लगाऊं।
1: हो
0: है
1: आओ
0: ये माला नहीं भी लगाऊं बाप जी।
1: बस ठीक हो गया।
0: ऊपर ऊपर टांग दो तो
4: जल लो भाई। भूषण जी
5: जी सर
4: गुरु जी के जल चढ़ाते हुए
5: जी
4: अवतारपुर जी
5: अवतारपुर
4: यू कैन ऑल हो गया। इधर आ जाओ सामने से जल चढ़ाते हुए तीन चार सौ लोटे ये भी माला हो जाएगी ऊपर में।
1: इधर
4: सामने आकर चलाते हुए सामने इधर देखते हुए। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षां शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधया शांति

0: शमीहसे ततो जनाकुरु प्रजाभ्य अभ्यशुशान्तिर्भवतु नमः
1: पार्वती पते हर हर महादेव
0: दीप नारायण
1: भगवान की जय देवेश्वर महादेव की जय
0: सम्राट माधवानंद जी
1: भगवान की जय
0: गुरु महामंडलेश्वरी योगी राज परम पिता परमेश्वर परम पूज्य सद्गुरु देव
1: देव की जय
0: सत्य सनातन
1: संसार की जय
2: उधर गुड में
0: पार्वती मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनोहरि अलकपुरुषा महादेव की जय
1: हो
0: देवपुरुषा महादेव की
3: जय
0: दीपेश्वर महादेव की जय विदुधरम सम्राट माधवानंद जी भगवान की
3: जय
0: शुभ्रमा मंडलेश्वर योगिराज परमपिता परमेश्वर परम पूज्य सद्गुरुदेव की
3: जय
0: सत्य सनातन धर्म की
3: जय
0: आज के आनंद की
3: जय

0: श्री दीप नारायण भगवान की, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म अलकपुरी जी महादेव की जय। गुड इवनिंग,
1: दोबर वेचर,
0: माय डियर सिस्टर्स ब्रदर्स,
1: ड्रागे सेस्त्रे ब्राचो,
0: ऑल फ्रॉम अवर योगा इन डेली लाइफ,
1: इज योगे उ svakodnevnom životu,
0: थ्रू आउट द होल वर्ल्ड,

0: श्री तुलसीदास कृत रुद्राष्टकम समाप्तः।
1: नाथातो
0: भगवान की
1: जय हो। नाथातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वैतीर्नमेवं गते।

वनप्रहरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी प्रालेयाचलवंश पावनकरी काशीपुराधीश्वरी नित्यानन्दकरी भवभयकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमाम्बराडाम्बरे मुक्ताहारविलम्बनं मनकरे।

जय हो। अतुलित वल धाम हेम शेलाव दे है हनुमान चालीसा कर रहे थे ना। अतुलित वल धाम हेम शेलाव दे हम धनुजवन कृशानो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम।

एक वो भजन गा रहे थे ना आप, कौन सा वो? और फिर महामंडलेश्वर विपुल जी महाराज बोलेंगे कुछ, है ना?

आयो शरण तिहार शंभो पार पार छो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो कैलाश के

ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिने जो चाहा वरदान दे दिया।

तुम आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू आयो शरण तिहार शंभो तार तार तुम शंभो तार तार तुम।

मन है, जहर पिया जीवन दिया, ओ हो हो, जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू, कितना उदार तू, कितना उदार तुम, आयो शरण।

बार नेह मुझको निहार तू मुझे निहार तू मुझे निहार तू आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू आयो शरण तिहार भोले तार तार तू आयो शरण तिहार गुरु तार तार तू आयो शरण तिहार देवपुर जी तार तार तू आयो शरण तिहार दीप प्रभु जी तुम आयो शरण तिहार माधव जी तुम आयो शरण तिहार महेश्वरानंद जी तुम कैलाश के

0: श्री नरयम भगवान
1: की जय।
0: सदाशिव महादेव
1: की जय।
2: Which one is this? Rupa Vas Maheshwara, this one.

ओम शलक पुरज महादेव की जय। देवादेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर अनंतपुर जी गुरुदेव आज का नंद की जय। सब संत शुभ महात्माओं की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। सत्सना

0: ओम शलभपुर्ज महादेव की
1: की
0: जय,
1: जय।
0: देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय, श्रीदीप नारायण भगवान की जय, हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सदगुरुदेव भगवान की जय,
1: जय
0: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी गुरुदेव की जय। सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ

0: तो वो बड़े खुश हुए हैं और उन्होंने आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। मंच पर विराजमान हमारे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी, महामंडलेश्वर स्वामी फुलपुरी जी, जोधपुर से आए हुए हमारे संतजन, हमारे राजेंद्रपुरी जी, छगन जी, चंदन जी, हमारे माधव जी और हमारे विदेशी भक्त जो इस कार्यक्रम को यहाँ से लाइव देख रहे हैं अपने अपने देशों में, और इस स्कूल के आपके सुरेश जी गर्ग और इतने सारे बच्चे जो यहाँ आए हैं, आप सबका मैं स्वामी जी की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबको ये विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि वैसे तो आपको पता ही है कि आज हमारा जो दुनिया का 8वां अजूबा है ओम आश्रम, उसकी 2nd एनिवर्सरी है। मतलब आज के दिन हमारे इसकी उद्घाटन हुआ था, 2 साल हो गए हमारे इसको बने हुए, उद्घाटन हुए हुए। तो इस आश्रम के बारे में और स्वामी जी ने जो ये बनाया है आश्रम के बारे में, मैं सब बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में ये पहला मानव निर्मित भवन है जो हमारे गुरुदेव ने बनाया है। तो हमें ये गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारे भारत में और हमारे राजस्थान में एक ऐसा अजूबा है जो पूरे विश्व में और पूरे ब्रह्मांड में ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। तो हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस करना चाहिए और इसकी सारी जो ख्याति है और जो इसकी जो महिमा है वो सारी हमारे जो साधु संत हैं जो यहाँ पे विराजमान हैं, आप देखेंगे विदेशों से भी बहुत सारे लोग आते हैं। ये पहला ऐसा सेंटर है जिसमें करीबन इतने सारे विदेशी लोग आके यहाँ पे पूजा करते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारा सनातन धर्म में जो ताकत है वो पूरी स्वामी जी ने विदेशों तक फैलाई है और उसके लिए हम स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। हमें खुशी है कि इतने सारे बच्चे इस उम्र में अगर आके और जिस सनातन धर्म का ये सुन रहे हैं ओम आश्रम के बारे में, तो ये एक हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी शक्ति है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
1: ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वान्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सार्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। इस मंत्र के साथ मैं हमारे पूज्य गुरुदेव विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी महाशरण जी को प्रणाम करता हुआ, अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूंगा। आपको तो वैसे सबको इंग्लिश तो आती ही है क्योंकि आधा आधा इंग्लिश तो बोलते ही रहते हैं। सो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू टू द 2nd एनिवर्सरी ऑफ ओपनिंग ऑफ ओम आश्रम। Today we have a great guest. We can say our friends, our colleagues, our well-wishers. Mahamandaleshwaram Shri Swarupananji Maharaj from Jodhpur. He is excellent speaker on all kathas or Ramayana, on Shiv Puran, Bhagavad Katha. He speaks on Advaita Vedanta, on Upanishads, in many places. He has his ashram in Jodhpur, Ahmedabad. He's traveling very often and many, many places. Beside him, you can see our Swami, Mahamandaleshwar Swami, Chetan Giriji Maharaj from Sojat. He's connected with us for the last 40 years. So I'm welcoming both of them to our ashram. Mahamandaleshwar Swami Fulpuriji doesn't need any introduction. He is part of our family. Acharya Rajendrapuriji is also here. And we have also on one side, we have Kapilji Agarwal from Jaipur, a big businessman. And our Mother Prasad Sharma, who taught many of us Bhagavad Gita and many other shlokas. So I welcome him also. We have here Chandanji, Chaganji, all the Nepal Rani, all our friends are now on the stage. So this is the opportunity to remember that Swamiji did a miracle. He managed to create a big ashram, such amazing structure that we can even call it the eighth wonder of the world. I was just now in Bikaner and I saw that even the king took a lot of time to make some temple. But Swamiji managed to overcome so many problems, so many things, and he managed to give to the world, to the India, this amazing Om Ashram, Dvadash Jyotirling, and all us together united under one roof. तो बाप जी ने जो यहाँ काम किया था एक चमत्कारी बात है चाहे 25 साल 30 साल लग गया लेकिन संपूर्ण हो गया जो आप सुन रहे थे एक जुबा है एक चमत्कार है ये मंदिर बनाना बहुत मुश्किल काम होता है और ऐसे बड़ा मंदिर बनाना इससे डबल गुना बड़ा है तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग स्कूल से पधारे स्कूल हमारे निदेशक साहब को और सारे टीचर को मैं धन्यवाद देता हूँ और आपकी इतनी शांति से बैठे मैं सबको धन्यवाद देता हूँ इस शब्दों के साथ जय श्री राम

क्या हुआ? संतों और ऋषियों की साधना से, दिव्य ज्योत से प्रकाशित होते हुए इस ओम आश्रम के द्वितीय वार्षिक उत्सव पर उपस्थित मंच के ऊपर हमारे श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 श्री शिव स्वरूपानंद जी महाराज और इसी ओम आश्रम के पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर विश्व गुरु मेसन जी के शिष्य महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वरपुरी जी और पूज्य गुरुदेव महेश्वरानंद जी के ही शिष्य महामंडलेश्वर श्री फूलपुरी जी और उन्हीं के शिष्य राजेंद्रपुर जी और यहाँ पर मंच पर उपस्थित समस्त अतिथि आश्रम के आत्मीयता से जुड़े हुए सभी और आज इस आश्रम की ओम आश्रम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा द्वितीय उत्सव के वार्षिक उत्सव पर उपस्थित समस्त बच्चों, प्यारे बच्चियों ध्यान देना, एक हमारा मंत्र है। आप विद्यार्थी हैं और इस आश्रम से यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा यहां पर गुण, संस्कृति भारत की जो है उससे ओतप्रोत यहां पर कराया जाता है। न गुरोर अधिकम तत्वम, न गुरोर अधिकम तपह, तत्व ज्ञानात परम नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का सबसे जीवन के अंदर सबसे बड़ा ऐश्वर्य है वो विद्या है। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी यदि कोई ऐश्वर्य है वो विद्या ही है। और विद्या को बच्चों ध्यान देना, बात को आप गेट की तरफ आप ध्यान नहीं दे, जिनको बाहर जाना तो जाइए, बच्चों का ध्यान बार बार उधर जा रहा है। बच्चे आपके जीवन के सबसे बड़ा ऐश्वर्य विद्या है। और विद्या जो है ना, अब अपनी मारवाड़ी भाषा में थोड़ी बात कर लेता हूं आपसे कि हम किसी से यदि कुछ अर्जित करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो वहां अपन पुत्र बनकर के, शिष्य बनकर के, पूर्ण शनाकत धारण करके हम अर्जित कर सकते हैं। बाकी कोई व्यक्ति अपने अहंकार से, अभिमान से या घमंड से कोई किसी से कुछ नहीं अर्जित कर सकता है।

इसलिए विद्यार्थी के लिए जीवन के अंदर गुरु से बढ़कर के और कोई तत्व नहीं है, ना गुरु और अधिकम तत्व। गुरु शब्द का अर्थ है जो हमारे पूज्य गुरुदेव मेसरन जी ने पूरे विश्व के अंदर जिस ज्ञान का प्रकाश फैला करके पूरे विश्व के प्राणियों का ध्यान भारत भूमि की तरफ और उसी भारत भूमि के अंदर राजस्थान प्रदेश और राजस्थान के अंदर ही भी वो पाली डिस्ट्रिक्ट, पाली जिला और पाली जिले के अंदर ही ये पाली और सोजत के बीच में ये डाडन जो भूमि है, जहां पर जो अभी अभी बताया गया कि विश्व का ये आठवां अजूबा जो ओमकार का स्वरूप में यहां पर दिव्यता से उत्पूर्ति ओम आश्रम की स्थापना। तो वो जो ज्ञान जो अपन को अज्ञान पे अंधकार से हटा करके ज्ञान पे प्रकाश की तरफ जो अपन को बढ़ाए, उनको गुरु कहा गया है। अपन आज कम से कम यहां पर अभी जो विद्यार्थी है करीब 480 और 500 के बीच में यहां पर विद्यार्थी बैठे हैं। अपन सब यहां से अपने जीवन का तत्व जान रहे हैं। हां, आप एक भाषा को तो सीख रहे हैं, इंग्लिश भाषा है, संस्कृत है, हिंदी है, ये सब भाषा जीवन के तत्व को जानने का एक माध्यम है। गुरु से बढ़कर के इस जगत के अंदर कोई ऊंचा नहीं है, ना गुरु अधिकम तत्वम। गुरु से बढ़कर के कोई जीवन के अंदर अपना तत्व नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। ना गुरु अधिकम तप, गुरु से बढ़कर के कोई तप नहीं। हमने देखा है कि जिस समय इस आश्रम की यहां पर कुछ नहीं था, जंगल था, बबूल आदि यहां पर झाड़ियां खड़ी थी, परंतु विश्व गुरु महामंडलेश्वर जमेश्वरनंद जी महाराज की वो शुभ दृष्टि का पात हुआ इस भूमि पर। उनकी जब नजर यहां पर पड़ी तो यहां पर देखिए, जहां संत है वहां वसंत है। यहां पर पूज्य गुरुदेव की नजर पड़ी और गुरु जी का महादन जी की भी कृपा हुई और यहां पर इस जहां पर कांटों की झाड़ियां थी, आज यहां पर पूरे विश्व के अंदर लोग यहां पर पर्यटक के रूप में आ रहे हैं। ये संत, जहां संत है वहां वसंत है। वसंत का मतलब आनंद है और जिस आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है, ओपोजिट वर्ड नहीं है। सुख का दुख है, लाभ कहानी है, जय का पराजय है, परंतु आनंद का कोई विलोम ओपोजिट शब्द नहीं है। तो ये गुरु की ही तपा तपस्या है कि एक 25 साल के अंदर इतना भव्य, सही पूछो तो कभी कभी तो हमारे मन में भी आता था कि महेश्वरानंद जी महाराज ने इतना बड़ा ओमकार का ये स्वरूप जो आकृति ली है, ये किस तरह से पूर्ण होगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन एक क्षणिक जीवन होता है। किस समय क्या हो सकता है, अगले पल की जिनकी कोई खबर नहीं। और वो आज ध्यान देना बच्चों, ये गुरुजी की बहुत ही महत्व तप है, जिनसे तब से जाकर के उनके जीवन काल में ही ये ओमकार स्वरूप का जो विश्व का आठवां अजूबा है बनकर के आपके हाथों से ही 2 साल पहले सभी संत महापुरुषों के सानिध्य में यहां पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो ना गुरोर अधिकम तत्वम, ना गुरोर अधिकम तपः, गुरु से बढ़कर के और कोई तप नहीं हो सकता है,
न गुरु अधिकम तत्व न गुरु अधिकम तप, तत्व ज्ञानात परम नास्ति। ध्यान देना, इसी ओम आश्रम से जो भारत भूमि, जो ऋषियों की भूमि है, ये तपोभूमि है, जहां भारत से सदैव और जिस विद्या के कारण, जिन ज्ञान के कारण भारत विश्व गुरु कहलाया और आज भी है, ऐसी बात नहीं, जो ब्रह्म विद्या है, जो हमारी वेदों का अंतिम भाग जो उपनिषद है, उपनिषद के अंदर जो ब्रह्म विद्या है, वो ब्रह्म विद्या का ज्ञान भारत को छोड़ करके और विश्व के अंदर कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वो ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म विद्या जो समस्त विद्याओं की राजा है, जो गोपनीय विद्या है, वो गोपनीय विद्या यहां ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदान की जाती है। ना गुरुर अधिकम तत्व ना गुरुर अधिकम तप, तत्व क्या ना, तो जो ब्रह्म विद्या संपूर्ण विद्याओं का सार है, वो ज्ञान का सूत्र इस ओम आश्रम से निरंतर। और गुरुजी ने पूरी पृथ्वी का जो वसुंधरा है, अनेकों बार पूरी वसुंधरा का भ्रमण करके, एक बात और समझना, पूज्य महेश्वरन जी ने पूरी पृथ्वी का अनेक बार भ्रमण करके इस वसुंधरा और पूरे ब्रह्मांड का सार जो वेदों के अंदर भी बताया है, वो ओमकार उस निचोड़ को अपने जीवन में साधना बना करके, उस साधने तत्व को यहां पर इस भारत भूमि पर, अपनी ये डाडन की भूमि पर उन्होंने स्थापित करके जगत के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि जीवन का यदि कोई सार है तो वो ओम ही है। इसलिए ध्यान देना, आवता हरि ओम बोलो, बैठते भी हरि ओम बोलो, उड़ते भी हरि ओम बोलो, सुबह भी हरि ओम बोलो, उगरते प्रभात आप हरि ओम बोलो, यही जीवन का सार है, जीवन का तत्व है। आज बहुत बड़ी प्रसन्नता है बच्चों, अपने जीवन के अंदर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होती है, जो अपने गुरुजनों के प्रति, गुरु का मतलब आप समझ लेना, गुरु से जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो तो गुरु है ही है, परंतु हमारे परिवार में भी, हमारे कुटुंब के अंदर भी, जो हमारे बुजुर्ग है, जो बड़े हैं, उनके प्रति भी हमारा आदर होना चाहिए, सत्कार के साथ में आदर रहेगा, उनके प्रति हमारा मान रहेगा, सम्मान रहेगा, उनके प्रति पूर्ण शरणागति होगी, समर्पण होगा, उनके चरणों के अंदर जब अपन अपने जीवन को पूर्ण निछावर कर देंगे, तभी जाकर के वो तत्व का ज्ञान अपन को प्रकाशित होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के, और वो भी श्रद्धा कैसी, आदर युक्त। एक श्रद्धा तो वो भी होती है भैया, जैसे अपने जीवन भर कठिन परिश्रम करके जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और बैंक में जाकर के जमा कराते हैं, और वहां पर बैंक मैनेजर केवल एक सिग्नेचर करके देता है, वहां केवल बैंक मैनेजर के सिग्नेचर के ऊपर हमारी श्रद्धा है, परंतु उसी बैंक मैनेजर को यदि कभी अपन पैसा लेने के लिए वापस जाते हैं और बराबर जब कोई टॉकिंग नहीं होती है, तो बाहर आकर के उसी मैनेजर को हम

करें, एमबीए एमसीए करें, लेकिन वो संस्कार के सहित होगी, तो वही नरेंद्र मोदी और योगी जी जैसे देश पर गौरव करके देश के नाम को, आपके नाम को, मारवाड़ के नाम को विश्व के कोने कोने में पहुंचाएंगे। मारवाड़ में पढ़े लिखे तो लाखों लोग हैं, लेकिन स्वामी महेशानपुरी जी ने जो कार्य करके दिखाया, विश्व के 100 से ऊपर देशों में भ्रमण करके सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। वो चाहते तो फैक्ट्रियां खोल सकते थे, वो चाहते तो होटल खोल सकते थे, वो चाहते तो और सब कुछ खोल सकते थे, लेकिन खोला क्या? ओम दीप गुरुकुल विद्यालय खुला है, मेडिकल कॉलेज खोले हैं, गौशालाएं खोली हैं। किसके लिए? आप सबके लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए, कि सनातन का नाम पूरे विश्व में। संत पैसा आएगा तो सनातन के लिए लगाते हैं, विश्व में नाम है ओम दीप गुरुकुल का। कल आप भी कल विदेश में जाएंगे तो आप कहेंगे हम उस ओम दीप गुरुकुल विद्यालय के पढ़े हुए हैं जहां स्वामी महेशानंद जी महाराज ने बनाया, जिसका नाम वर्ल्ड गिनीज ऑफ बुक में नाम है। आपका एक स्वाभिमान होगा हम वहां पर पढ़े हुए, हम लोग भी कहते हैं कि हम उस स्कूल में पढ़े हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेते हैं, उन्होंने कहा था कि जिस देश की संस्कृति मजबूत होगी वो देश मजबूत होगा, और जिस देश की संस्कृति कमजोर होती चली जाएगी वो देश मिटने में समय नहीं लगता है। आज हमें अपनी देश की संस्कृति संस्कार को विश्व के कोने कोने में पहुंचाना है। वो कब पहुंचेगी? जब हमारे एजुकेशन के साथ साथ संस्कार और संस्कृति होगी। स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज के जीवन में देखिए, संस्कार संस्कृति को लेकर के 100 से ऊपर देशों में जाकर के प्रचार किया है। जार्डन का नाम विश्व के कोने कोने में है, विश्व के कोने कोने में है। और अब वही दायित्व हमारे फूलपुरी जी महाराज, राजेंद्रपुरी जी महाराज, ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज, अवतारपुरी जी महाराज, इन सबके कंधों पर है। ऊंचाई पर पहुंचना तो सरल होता है, लेकिन ऊंचाई पर टिके रहना सबसे कठिन होता है। आज ये संस्था इतनी बड़ी बनी है, कल आप भी गौरव करेंगे। आप कहीं जोधपुर में आएंगे तो हम कहेंगे वो बालक हैं जो स्वामी महेशानपुर जी महाराज के विद्यालय में पढ़े हुए, विश्व में जिनका नाम है। इस नाम को बरकरार रखना है, नाम को विश्व के कोने कोने में पहुंचाना है। हमें वो संस्कृति नहीं चाहिए जो अमेरिका में एजुकेशन लेकर के अमेरिका में नौकरी करते हैं और माता जी का शरीर शांत होता है तो वहां से चाचा कहते हैं चाचा जी वीडियो कॉलिंग करके देख लेंगे, माता जी की अंतिम क्रिया आप कर दीजिए। ऐसी संस्कृति, ऐसी एजुकेशन हमको नहीं चाहिए। हमको वो संस्कृति चाहिए जो माता पिता से जुड़ाव हो, जिन्होंने फटे कपड़े पहन करके बच्चे को पढ़ाया, भूखे रह करके बच्चे को पढ़ाया, कर्जा लेकर के बच्चे को पढ़ाया, और वो अमेरिका में जाकर के कहते हैं कि हम लाख रुपए खर्च करके नहीं आ सकते। आप अंतिम संस्कार कर दीजिए चाचा जी। वो संस्कृति हमें नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो माता के चरणों में बैठ करके माता का चरण स्पर्श करे, पिताजी के चरणों में बैठ करके पिताजी का चरण स्पर्श करे और कहे पिताजी आप धन्य हैं, हम धन्य हैं कि आपके जैसे माता पिता हमको मिले। जो गौरव करे अपने माता पिता पर, अपनी संस्कृति पर, संस्कार पर, अपने मारवाड़ पर। इसलिए स्वामी फूलपुरी जी महाराज, स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज, अवतारपुरी जी महाराज, राजेंद्रपुरी जी महाराज, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए और महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए, इन्होंने वो वट वृक्ष लगाया है आने वाले लाखों सालों तक बीज देकर के विश्व में नए ऐसे गुरुकुल, नए ऐसे विद्यालय, नए ऐसे मेडिकल कॉलेज खुलवाता रहेगा। इसलिए महाराज श्री के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आप सब बच्चों को साधुवाद कि आप आगे चल करके विवेकानंद जी की तरह देश के कोने कोने में निकले, देश के कोने कोने में सनातन धर्म की ध्वजा पताका को फहराएं और गर्व महसूस करें कि स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज ने देश के 100 देशों, विश्व के 100 देशों से ऊपर सनातन संस्कृति पहुंचाया। आप देश के 180-200 के आसपास देश हैं, 202 हैं या 203 हैं इस समय वर्तमान में,

श्री दीप नारायण भगवान की सर्वप्रथम विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय आराध्य गुरुदेव के चरणारविंद में सत सत नमन। गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी महेश्वरानंदपुर जी महाराज के आशीर्वाद से ओम श्री विश्वदीप गुरुकुल स्वामी महेश्वरानंद जी आश्रम शिक्षा एवं शोध संस्थान के अंतर्गत विश्व का एक मात्र ओम आश्रम जो विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी महेश्वरानंदपुर जी महाराज की कल्पना थी वो साकार रूप लेने के बाद द्वितीय वर्षगांठ का आयोजन के उपलक्ष में पूज्यपाद ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय शिवस्वरूपानंद जी महाराज चेतन गिरी जी महाराज मेरे आत्मप्रिय स्वामी ज्ञानेश्वरपुर जी महाराज स्वामी अवतारपुर जी महाराज स्वामी राजेंद्रपुर जी महाराज मनसासेन विराजित संस्था के सभी शुभचिंतक एवं भक्तगण गुरुजन बालक बालिकाएं सभी को पूज्य श्री गुरुदेव का बहुत बहुत आशीर्वाद एवं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आप यहाँ पधारे इसके लिए आपको बहुत बहुत बहुत धन्यवाद है। शास्त्र में अनंत हरि कथाएं कहे सुने बहुविधि सब संताएं मुझे पूर्व हमारे गुरुजनों ने या विद्वानों ने जो आपको व्याख्यान दिया आशीर्वाद दिया उद्बोधन दिया मेरा यही निवेदन है कि इसको हृदयंगम करके आत्मसात करके अपने जीवन को आप आगे बढ़ाएं और विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी महेश्वरानंदपुर जी महाराज ने जो संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति सभ्यता योग वेदांत पर्यावरण विश्व शांति मानव मात्र के कल्याण हेतु जो कार्य किए हैं उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चलें इतना कह करके मेरी वाणी को विराम देता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद। विशेष करके हमारे आत्मप्रिय या आत्मा आश्रम के सब शुभचिंतक ये सभी स्वामी जी महाराज निवेदन करना चाहूँगा कि स्वामी पूज्य गुरुदेव के ये हमारे परंपरा के सभी शुभचिंतक हैं और कार्यक्रम रात्रि को ही मुझे जानकारी मिली कार्यकर्ताओं की व्यस्तता थी इधर इधर सारे व्यस्त थे और उनका कहना था कि कार्यक्रम जो है शीघ्र करना है ये विलम्ब नहीं होना चाहिए तो रात्रि को भूमिका बना करके आप सभी को हमने शायद जल्दी जल्दी फ़ोन से निवेदन किया होगा ना समाचार हुआ ना पत्रिकाओं के माध्यम से किसी को संदेश मिला है लेकिन आप कुछ ही जो है सूक्ष्म समय में आपने अपना अमूल्य समय निकाल के आप सभी पधारे उसके लिए पुनः बहुत बहुत आभार एवं हार्दिक अभिनंदन। बड़ा अभी चिंता का विषय है कि विश्व गुरु जी इस जो है कार्यक्रम के बीच में उपस्थित नहीं है उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है ऐसे मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था पर फिर भी भगवान के लिए गुरुओं के लिए और समाज के लिए ये चोला पहना है तो आपके बीच खड़ा हूँ और साथ ही साथ में गुरुदेव जहाँ विराज रहे हैं वहाँ से भी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा दूरभाष के माध्यम से

कि उनका संवाद हो पाएगा या नहीं, नहीं ये नहीं कह सकता, लेकिन आशीर्वाद जरूर आपको जो है दूरभाष के या जो है मोबाइल के माध्यम से हो जाएं, ये कोशिश करता हूँ दो मिनट में आपसे। पुनः बहुत बहुत पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और हरिओम। दीप नारायण भगवान की, हिंदू धर्म सम्राट माधवानंदपुर जी महाराज की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, हरिओम।

0: सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ ध्येयं सदा परिभवगनमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत सरभूषित महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, अन्य हमारे सभी संत वृंद एवं प्रिय बंधुओं और स्नेहवती माताओं, आप ट्रांसलेट करो।
1: He's traveling in America, Australia, and everywhere, so I was hoping he will speak in English. So he greeted all of us who are currently here.
0: Param Pujya, Param Shraddhya, Ananta Sri Bhushit, Shraddhya Mahamalesha Swami Maheshwarananji Maharaj, jinki pavan kripa se इस आश्रम में, ओम आश्रम जॉर्डन में आप सबका आना हुआ, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो आज चाहे अस्वस्थ हैं लेकिन उनकी जीवन की बहुत बड़ी साधना है जो आज हमें ओम आश्रम के रूप

0: who created this Om Ashram and who actually enabled all of us to come here in this place.
1: आने वाले समय में विश्व भर के लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे.
0: And he thinks that this tapasya, this kind of sadhana will bring millions of people in the future.
1: हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है.
0: In Indian tradition, there is a great importance of guru.
1: हमारे भाष्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं.
0: Shankaracharya ji says in his Bhashya, in his commentaries.
1: ईश्वर से भी बढ़कर अगर कोई है तो वो गुरु है.
0: If somebody is greater than God, then this is guru.
1: ईश्वर को हमने किसी ने देखा नहीं है.
0: Nobody saw God.
1: गुरु जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं.
0: And guru is in front of us.
1: हमारे भाष्यकार कहते हैं कि दुनिया में तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं.
0: Our commentators of spiritual texts say there are three very rare things in this world.
1: First, सबसे पहली मानव का जन्म.
0: First is the being born as a human.
1: दूसरा उस परम तत्व की प्राप्ति.
0: Reaching the divine consciousness.
1: और तीसरा महापुरुषों का सत्संग.
0: And third is the satsang with the great saints.
1: हम इस बात को मानते हैं कि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता.
0: We believe that human life is not available all the time.
1: मनुष्य जीवन में दो विशेषताएं हैं. एक तो हमें परमात्मा ने जैसी बुद्धि दी है, मनुष्य को वैसी बुद्धि किसी और प्राणी के पास नहीं है.
0: There are two things important in human form. One is the intellect which no other living beings have.
1: और दूसरा हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है. ये केवल मनुष्य को ही कर्म की स्वतंत्रता मिली है.
0: And we are free to do whatever things, whatever karmas we want to do. So intellect and karmas are something specially made for humans.
1: हमें सबको समय बहुत कम मिला है, इसी समय का हमें सदुपयोग करना है.
0: We got a very limited time and we have to do good in this time.
1: हमारे यहाँ वेद में कहा है, इह चेद वेदी असत्यमस्ति ना चेद यहाँ वेदिन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु वचित्त धीरः प्रेत्य अस्माद् लोकाद् अमृतः भवन्ति. जिसका भावार्थ ये है कि इस मनुष्य जन्म को पाकर उस परम तत्व तक, उस परम सत्य तक पहुँच गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा.
0: In Vedas it says that if you are born as a human and you have to reach to this enlightenment, otherwise will be a lot of suffering.
1: उस परम सत्य तक पहुँचने का मार्ग गुरु ही बता सकते हैं. जैसे परम श्रद्धे स्वामी महेश्वरानंद जी ने लाखों हजारों लोगों को इस मार्ग पर लगाया और मार्ग दिखाया.
0: So to show this path, we have great saints, and one of that is our Gurudev Vishwa Guruji, who taught hundreds of thousands of us on the path how to realize oneself.
1: इसलिए हमारे यहाँ गुरु का बहुत महत्व बताया गया है. वेद में कहा है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ही कथते अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः. जैसी हम लोग श्रद्धा गॉड पर, ईश्वर परमात्मा पर है, वैसी ही श्रद्धा हमें गुरु पर भी होनी चाहिए.
0: So in Vedas it said that as much as we believe in God, the same amount of belief we should have to our guru.
1: इस आश्रम की परंपरा बहुत प्राचीन और बड़ी पवित्र परंपरा है. परम श्रद्धेय स्वामी अलकपुरी जी महाराज, स्वामी देवपुरी जी महाराज, दीप नारायण प्रभु जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी माधवानंद जी महाराज और श्रद्धेय विश्व गुरु जी महाराज.
0: So our parampara, our lineage is very holy and very old. It starts from Alakpuriji, continuing to Devpuriji, Mahaprabhuji, Holy Guruji, and now Vishwaguruji.
1: इसलिए आप सब भाग्यशाली हैं. आप सबको ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है, ऐसे गुरु की शरण में आप आए हैं.
0: You are very lucky to get such a guru and be protected in his shelter.
1: इसलिए इस गुरु के माध्यम से ही आप उस परम सत्य तक पहुंच जाएंगे और आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा.
0: And because of that, you will be able to reach

गोपाल महोत्सवादि सकलै रावेष्टितं सुन्दरम् रासकीर्णन तत्परं हरिहर

0: अब आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी को अपने जीवन में प्राइमरी से लेकर के और एमए तक पढ़ाई करनी होती है, इसी प्रकार की पढ़ाई हमारे अध्यात्म की है, ज्ञान की है।
1: So in the same way, like the teaching starts from the first primary class going all the way to masters and PhD, the similarly the teaching is in adhyatma, in the spirituality.
0: हमारे अध्यात्म में, रिलीजन में, धर्म में प्राइमरी की 10 पुस्तकें हैं।
1: In the first class of our in Hindu dharma and religion and spirituality, there are 10 basic entrance books, primary books.
0: Dhriti kshama dhamo asteyam shocham indriya nigraha धीर विद्या सत्यम क्रोधम दर्शकम ग्रस्त लक्षणम धर्म लक्षणम। पहला है धैर्य,
1: फर्स्ट इज
0: धृति, धृति मनी धारण करना,
1: सो टू टू एंड्यूरेंस।
0: हाँ, जैसे अभी सिस्टर गा रही थी
1: पेशेंस,
0: कि हमारे साथ विश्व गुरु जी है, हमको कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, इसी को कहते हैं धीरति, पकड़।
1: सो दिस इज लाइक व्हेन विश्व गुरु जी इज विद अस एंड वी टॉलरेट और वी आर रेडी टू सपोर्ट और बेयर एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम।
0: गुरु जी ने जो आपको मंत्र दिया है, उपदेश दिया है और अपना लक्ष्य बताया है।
1: सो व्हाटएवर द विश्व गुरुजी टोल्ड, गुरुजी गेव यू द मंत्रा, द टीचिंग्स एंड ऑल व्हाट यू हैव टू डू,
0: उस पर पकड़ रखना,
1: यू हैव टू फॉलो,
0: इसको धीरति बोलते हैं।
1: दिस इज कॉल्ड धीरति,
0: क्षमा,
1: एंड्यूरेंस, पेशेंस।
0: कोई छोटा आदमी अगर कोई गलती कर जाता है तो बड़े आदमी को उसको क्षमा करना चाहिए, जैसे कोई क्षमा भी मांग लेता है, कोई क्षमा कर लेता है। आई एम वेरी सॉरी।
1: सो फर्स्ट वन वॉज पेशेंस, द सेकंड वन इज टू फॉरगिव। सो व्हाटएवर हूएवर डज समथिंग, यू आइदर फॉरगिव टू देम और यू फॉरगिव टू अदर्स।
0: प्राइमरी की शिक्षा में जो वाइफ हस्बैंड है, पति पत्नी है, उनको साथ बैठ करके धर्म और भगवान का चिंतन करना चाहिए।
1: सो इन द फर्स्ट क्लास टू द हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड थिंक अबाउट गॉड।
0: धृति क्षमा दमस्तेयम प्राइमरी में है, किसी भी वस्तु की, पैसे की, अन्न की, धन की चोरी नहीं करना, नहीं करता है तो वो उसमें पास हो रहा है।
1: द थर्ड स्टेप इज नो नॉट स्टील, व्हाटएवर मनी थिंग्स और समथिंग यू हैव दे शुड नॉट स्टील।
0: पवित्रता,
1: प्यूरिटी,
0: पवित्रता बहुत जरूरी है। मैं प्लेन में सफर करता हूँ तो केवल वहाँ ईयर लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि वो लाते हैं, एक्सक्यूज मी, veg, non-veg, veg, non-veg.
1: So purity, like in an aeroplane, I take only water because, or air, because the people are offering veg, non-veg, and all these impure things.
0: वो पवित्र नहीं होता, शोध मैंने शुद्ध नहीं होता.
1: They are not pure, they are not clean.
0: तो धृति क्षमा दमयस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रहा. हमको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, जिससे कि हमारा नेचर ऊपर को बढ़े, हम उसमें ऊपर को आवें. ऐसा खान पान आहार व्यवहार हमको रखना चाहिए.
1: सो वी शुड ईट ड्रिंक थिंक लिसन और व्हाटएवर वी डू शुड बी इन अ सच अ वे दैट आवर लाइफ ग्रोज दैट वी आर गोइंग अपवर्ड्स इन द अपर ट्रैजेक्टरी.
0: हमारे बृद्धारणक उपनिषद में लिखा है आपका आहार शुद्ध होगा. एक मिनट, आहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध हो सत्वशुति, तो आप विश्व गुरु जी की कही हुई आध्यात्मिक बातों को संभाल सकोगे, पकड़ सकोगे, कैच कर सकोगे.
1: In Brihadaranyaka Upanishad it says, if your deeds and food is clean, you will understand whatever Vishwa Guruji is trying to teach you.
0: Dhir vidya satyam akrodham dashakam grast lakshanam. Dhir vidya, buddhi, mind, isko buddhi ko सदुपयोग में लाना चाहिए. धी मनी बुद्धि. और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि है, धी मनी बुद्धि है, माइंड, ये जो है ये शुद्ध खाने से पावरफुल हो जाती है.
1: सो आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड शुड बी फॉर गुड. It should be pure, and this happens from the food.
0: Vidya,
1: knowledge.
0: Knowledge. जिसको knowledge कहते हैं वो विद्या. विद्या उसको कहते हैं जो आपको सुलझावे, उलझावे नहीं. सा विद्या या विमुक्त ही. जो आपको उलझावे नहीं, सुलझावे. उसका नाम है विद्या.
1: विद्या और नॉलेज इज दैट व्हाट फ्रीज यू, नॉट व्हाट बाइंड्स यू, व्हाट डजंट कवर यू और मेक्स यू बाउंड, व्हाट मेक्स यू फ्री.
0: आप उलझे नहीं हैं, इस बात का प्रमाण ये होता है कि आपको मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, ईर्ष्या नहीं, ममता नहीं, और संसार के प्रति अट्रैक्शन नहीं आप.
1: So you are pure when you are not having all this attachment to this world, mad, moh, rag, dvesh, and so on, all this.
0: हमारे वेदों में सर्वप्रथम दो बात की शिक्षा दी गई है, सत्यम बदो धर्मम चरो. सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो.
1: In Vedas there are two teachings which are taught on the beginning, tell the truth and follow the dharma, follow your duty.
0: A course aapka primary ka 15 minute mein pura ho gaya.
1: So you're the first class of the spirituality is done in this 15 minutes.
0: Ek hi aadmi ke liye, ek hi sadhak ke liye, एक ही शिष्य के लिए, एक ही भक्ति के लिए फाउंडेशन में प्राइमरी बहुत जरूरी है. जो उसके घर से साधना शुरू होती है.
1: So for any sadhaka, any bhakta, any disciple, for any human being, all these primary things are necessary as a base.
0: उसके बाद में उसी साधक के लिए रास्ते अलग अलग नहीं है कि योग अलग है ज्ञान अलग है भक्ति अलग है ऐसा अलग नहीं है एक ही रोड के अलग अलग नाम
1: So there is only one road with the different names. Somebody is calling yoga, somebody is calling jnana, somebody is calling this or that. There are no different roads.
0: Bombay Surat Road, primary. Surat, Baroda, middle. Baroda, Ratlam, high. Ratlam,
2: He's telling the map of India.
0: एक ही रोड के जैसे बम्बई से सूरत बम्बई सूरत रोड नाम हो गया और जब सूरत पहुंचते हैं तो वहां से सूरत बड़ौदा रोड हो जाता
1: सो लाइक व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम बम्बई गोइंग टू सूरत दिस इज कॉल्ड बम्बई सूरत रोड व्हेन यू क्रॉस सूरत इज कॉल्ड सूरत Baroda Road, and then afterwards continue. So in the same way, all the spiritual paths are basically going to the same direction.
0: Middle ka arth hota hai yog marg. Jis marg ka naam, jitna ka marg ka naam yog hai, usko yog bolte.
1: The middle school is yog.
0: Yog mein aapke liye 8 pustak hai, jinko aapko dhyan de karke पढ़ के पास होना
1: सो इन द योगा देयर आर 8 बुक्स इन व्हिच यू हैव टू स्टडी एंड देन पास
0: यम नियम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि पुस्तक यम यम का अर्थ होता है अपने को यमयति नियमयति दंडयति स्वान अपने को नियमित करना उस पुस्तक का नाम है नियम
1: द बुक व्हिच टेल्स अस हाउ टू कंट्रोल आवरसेल्व्स इज कॉल्ड नियम
0: नियम यम अपने को रोकना
1: यम इज द बुक व्हिच टेल्स अस हाउ टू स्टॉप आवरसेल्व्स
0: का अर्थ होता है जो योगा के लिए कहा हुआ योगश्चित्त वृत्ति निरोधा वो नियम हो गया
1: सो नियम इज दिस फर्स्ट लाइन दैट व्हेन योर थिंकिंग स्टॉप्स व्हेन योर
0: नियम मींस कानून को पास पालन करना उसको धारण करना उसको अपने जीवन में लागू करना
1: टू फॉलो द लॉज एंड रूल्स टू पुट इट इन योर लाइफ दिस इज कॉल्ड नियम
0: यम नियम के बाद में आसन है
1: After that is
0: बॉडी को सेट करना बॉडी में जो पॉइंट है उन पॉइंटों को हाईलाइट करना और उसके साथ साथ में जो है जिसको प्राणायाम बोलते हैं हमारी बॉडी ईयर से चल रही है उस ईयर को शुद्ध रखना इसका नाम है प्राणायाम और जो शरीर है उस बॉडी को फिट रखना यह है आसन
1: सो द थर्ड बुक आसन टेल्स अस हाउ टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हाउ टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड सो ऑन And the fourth book about pranayama is how to control the air and use it for the purification.
0: Asan se aapki body shuddh hoti hai. Aur isi prakar se pranayam se aapke andar 5 ear hai. Wo 5 ear shuddh hoke aur theek se delivery service karti hai aapki body ke liye. सामान की मटेरियल की सामान की
1: सो लाइक द आसनास प्यूरिफाई द बॉडी मेक इट क्लीन द सेम वे द प्राणायाम डज फॉर ऑल दिस 5 प्राणास 5 टाइप्स ऑफ एयर which then service our body properly.
0: उसके बाद में प्रत्याहार आता. प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है salt and sweet. समझ गए? प्रत्याहार मनी अपने अंदर चिंतन करना और बाहर से कॉन्टेक्ट सब खत्म करना, इसको प्रत्याहार बोलते हैं.
1: सो प्रत्याहार इज टू विद्रॉ वन सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक वन सेल्फ इनसाइड.
0: अभी हमारे अध्यात्म में इंडिया में लोग योगा का बहुत प्रचार करते हैं और दो ही बात बताते हैं, आसन और प्राणायाम. फाउंडेशन में जो यम नियम है वो नहीं बताते, दो ही बात बताते हैं, आसन प्राणायाम. फिजिकली बॉडी के लिए बहुत सरल होता है.
1: सो nowadays इन द वर्ल्ड इट्स वेरी फेमस द योगा. It's only mentioning just asanas and pranayamas, what is good for the body. But yama and niyama, the rules of outer and inner behavior that nobody tells.
0: Asan pranayam ke baad pratyahar hona chahiye. Lekin aaj ke yogi jo hai, vyapar shuru kar dete.
1: So after the asana and pranayam, pratyahara should come, but people started business before pratyahara.
0: Ye mera toothpaste hai, ye mera burush hai. ये मेरी वैसलीन है, ये मेरे स्किन क्रीम माई.
1: सो दिस इज माय टूथपेस्ट, दिस इज माय स्किन क्लीनर.
0: ये मेरा च्यवनप्राश है, ये मेरा ग्लूकोज है, ये मेरा वो है. तो प्रत्याहार जहाँ शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए था, वहाँ पर व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, विस्तार हो गया.
1: सो
0: इसलिए वो योगा के लिए अच्छा नहीं है.
1: So instead of pratyahara, which means coming inside, is vyapar, which means expand. So this is not good for yoga.
2: Guruji, ye baitha na. Baba
0: Ramdev ji. Kaam, aja wo. Hamara chela hai wo. Inko pata hai sabko. To usme ye hai. Ab iske baad mein hota hai dharana. Dharana. जो स्वयं का जजमेंट है, स्वयं की स्वीकृति है, स्वयं का निर्णय है, स्वयं की कैपेसिटी है और स्वयं की घोषणा है, उसको धारणा बोलते हैं.
1: सो धारणा इज द नेक्स्ट बुक, फिफ्थ बुक, विच सेज अबाउट इट्स आवर ओन कैपेसिटी, आवर ओन कैपेबिलिटी एंड सो ऑन.
0: अभी आप देख लीजिए धारणा किसको बोलते हैं. ये मेरा संगीत वाला है. धारणा किसको बोलते हैं? ये मेरा संगीत वाला. ओ भाई,
1: सो यू लुक
0: संन्यास लेगा?
1: मींस धारणा
0: नहीं लेगा. नो धारणा.
1: धारणा मींस एक्चुअली आल्सो कंसंट्रेशन. सो यू लुक एट माय द दोलक पर्सन इफ ही वांट्स टू हैव संन्यासा. सो ही सेड नो थैंक यू.
0: हमको एक व्यक्ति ने कहा, आपने अच्छा किया, आपने अपनी 21 पीढ़ी पार कर ली, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत महान हैं.
1: Somebody told me, you are a great person, you cleaned and purified and you cross over 21 of your family lineage, all 21 generations crossed over this samsara, you are a great person.
0: हमने अपनी चादर उसके गले में डाली, तुम भी अपनी परंपरा को, पीढ़ी को पार करो, तुम भी संन्यास ले लो. उसने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नो नो नो नो नो.
1: So then I said, okay, I took my shawl and I put around that person's neck and said, okay, now you become a sannyasi, you also take your 21 generations across this world. I said, no, no, no, no, no, thank you so much.
0: तो इसका मतलब है कि वो धारणा में नहीं है.

0: उसकी धारणा अच्छी नहीं है, उसका लाइफ जजमेंट या लाइफ जो उसकी प्राप्ति है वो पूरी नहीं है.
1: So desires in this life, they are not fulfilled for this person, and his concentration towards God, dedication is not there.
0: ध्यान, इसके बाद में ध्यान आता है. ध्यान में जो है, ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
1: Before meditation, you need some knowledge.
0: एक जो है, वो ध्यान बिजनेस बन गया.
1: And this knowledge became now business.
0: आप वहाँ गए, थोड़ी देर आपको घंटा दो घंटा बैठाया और बड़ी बड़ी बातें की, तो वो एक बिजनेस है. लेकिन ध्यान का, ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
1: So like this now, these meditation classes and so on, they are there just to make, it's like a type of business, but before you actually start with meditation, you have to have some knowledge.
0: अच्छा ये बताइए, मैंने आपको आपको देना है मनी, तो मनी 10 रुपए लोगे कि 50 लोगे कि 100 लोगे कि 500 लोग, 500 का नोट लोगे, कौन सा लोगे? जब मैं कहूँगा कि मेरे से मनी ले लो, मनी रखा है, तो कौन सा नोट लोगे?
1: So if I tell you, please take the money from me and then I give you 5, 10, 20, 50, 100 or 500 rupees, which one you will take?
0: अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इतने में से कौन सा नोट लेंगे आप?
1: From all of
0: 500 का ना, 500 का.
1: From all of this, you will take 500
0: का, ठीक है ना?
2: 2000 का
0: बंद कर दिया मोदी ने यार, 2000 दे दे. 200 का नहीं. कैसी बात कर रहा है? अगर हम आपको दे रहे हैं तो 500 का लेगा ना आदमी? नहीं लेगा क्या?
1: Yes. So if I give you 500 rupees, you will take 500 rupees. You will take less.
0: सभी अभी शर्मा रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो
1: Now we are like
0: again hand, yes.
1: Now we are a little bit ashamed, but when the opportunity comes, we will definitely take 500 rupees.
0: ध्यान उसी का होता है जिसकी कीमत आपके दृष्टि में ज्यादा होती.
1: So you can do dhyan, which when you value something really much.
0: Yam labdhva cha param labham manyate nadhikam tatah yasmin stobi dukhena guruna na vichalayit. To jiski aapki drishti mein mahima hoti hai, kimat hoti hai, mahatva hota hai, usi ko aadmi yaad karta hai.
1: So whatever is valuable in your eyes, whatever you think is good, whatever you think is best, that actually you concentrate on.
0: आपका, आपके जीवन में आपके बीवी बच्चे परिवार का महत्व है. अगर आप 2 घंटा ध्यान केंद्र में रहोगे भी और वो आपको कुछ बताएगा भी, तो थोड़ी देर में वहाँ से बाहर आने के बाद आपका ध्यान अपने बीवी बच्चों की तरफ जाएगा, क्योंकि उनका महत्व आपकी लाइफ में ज्यादा है.
1: Like if you have children, wife or husband, and then you go for meditation, even in this after the meditation, you will continue thinking, or during the meditation, you will continue thinking on them because they are something valuable in your life. You
0: मनुष्य के जीवन में परिवार होता है, संसार होता है, लेकिन मनुष्य का ज्यादा ध्यान गोल्ड पे होता है.
1: There is a family,
0: क्योंकि गोल्ड कीमती होता है, महत्व का होता है, उपयोगी होता है.
1: The for any human, the life, the family and the samsara, this world is valuable, but the gold is most valuable.
0: इसी प्रकार से जो है समाधि आती है, समाधि. हमारे किसी सृष्टि के सिस्टर का नाम भी समाधि था,
2: दिल्ली में.
0: हाँ, दिल्ली में समाधि सिस्टर है. समाधि का अर्थ होता है कि ना आप संसार में हैं, ना आप शरीर में आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अट्रैक्शन काउंटर वहाँ कहीं पर नहीं है, केवल केवल ओनली आपका अपने पर ध्यान है, उसको समाधि बोलो।

0: types of samadhis, sarvikalp and nirvikalp.
1: Sabikalp samadhi usko kehte hain, jahan par usko upar uthane ka sadhan bhi sachcha hai. Aur jahan ki uska god, jo usko pana hai, wo bhi uski samajh mein hai, isko bolte hain sabikalp samadhi.
0: So the Savikalp Samadhi is when there is a God who he understands and there is his desires, what he wants, so with some desire or with some aim.
1: Iske baad mein Nirvikalp Samadhi hai, jahan par na to shishya rehta hai, na guru rehta hai, ye dono God mein milkar ke God ho jate hain. Aham Brahmasmi.
0: So in Nirvikalpa, there is neither disciple, there is no guru. They both merge into the God. Aham Brahmasmi, I am Brahma.
1: Ye ho gayi. Ab 12th class ki, 16th class tak bhag to nahi jaoge.
0: So this is 12th class.
1: Ab 12th class kya hai? Bhakti. Jisko hum bhakti kehte hain.
0: So 12th class is bhakti.
1: Bhakti mein, bhakti ke course mein, 9 पुस्तकें हैं, 9.
0: In the course of bhakti, there are 9 books.
1: 9 पुस्तकें. बात सुनना तो केवल विश्वगुरु जी की सुनना. बाकी को सब को इग्नोर कर लेना. नहीं, हमने सुनना चाहते.
0: So first.
1: सर्वण भक्ति.
0: So first is listening. So listen only what विश्वगुरु जी says, nothing else.
1: अंदर से याद करो. तो only विश्वगुरु जी को याद करो, दूसरे को याद नहीं करो, ये कीर्तन है।
0: कीर्तन or remembering is that you remember only the words of विश्वगुरु जी, nothing else.
1: याद करो, तो एकमात्र गुरु और गोविंद को याद करो, दूसरे को नहीं, ये स्मरण भक्ति है।
0: Remembering the smaran bhakti is when you remember only God and Guru, nothing else. There is nothing except God and Guru.
1: Surrender. Charanon mein jhuk jana, charanon mein samarpit ho jana, charanon mein ashray pana, ye pad seva bhakti hai.
0: So these are the different ways how to surrender yourself to the lotus feet of Master.
1: Puja pujya samjho to Guru Gobind ko, puja karo to Guru Gobind ki. दूसरे की किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे मनुष्य को भटकने की संभावना होती है।
0: So if you do some puja, if you do some ceremony, do the ceremony for God and Guru. If you follow somebody, follow Guru and God, because otherwise you can get lost.
1: अपनी आवश्यकता और गुरु गोविंद का महत्व समझ करके जब वंदना की जाती है, स्तुति है, वंदन है, उसको वंदना भक्ति बोलते हैं।
0: When we start glorifying the importance of Guru and God, then this is called vandana. This next.
1: दास्य, सेवक, शिष्य, उसको दास दास्य भक्ति कहा गया है।
0: Next one is serving, to serve the Guru and God.
1: दास, अपना अपना अस्तित्व, अपना महत्व, अपना अहम आकार प्रकार स्वरूप मिटा करके गुरु में समाहित हो जाना उनकी सेवा में, उसको दास बोलते हैं।
0: दास और servant is when you renounce all of your I, all of your egoism, and then you dedicate your life to the service of the Guru.
1: जब आपका मन शुद्ध हो जाता है और गुरु गोविंद को विश्वास हो जाता है, तो उस समय पर God, भगवान, गुरु आपको अपना मानते हैं और आपके साथ मित्रता का विरोध व्यवहार करते हैं, उसको सखा भक्ति बोलते हैं।
0: सखा भक्ति इज द नेक्स्ट

0: step is when you believe and trust your guru so much that he also can become like your friend.
1: हमारे सनातन धर्म वैदिक मार्ग भक्ति मार्ग में धीरे धीरे धीरे धीरे अर्जुन जब कृष्ण के नजदीक गए तो भगवान ने उनको फिर दास नहीं रहने दिया, सेवक नहीं रहने दिया, उनको सखा बना दिया, सखा मित्र, फ्रेंड.
0: When Arjun was with Krishna, he didn't, after some time, he stopped being his servant, he stopped being his sevak, he became his friend.
1: इसके बाद में आत्मनिवेदन भक्ति आती है. बोलो महाराज जी, अब मैं आपके साथ ही कल सुबेरे चला चलूंगा. चलो इसकी तरफ से मैंने बोल दिया. कहते आत्मनिवेदन.
0: आत्मनिवेदन इज व्हेन यू से आई एम गोइंग विद यू टुमारो मॉर्निंग, आई विल गो विद यू व्हेरेवर यू वांट.
1: वो आत्मनिवेदन है. आत्मनि हमारा ये निवेदन है कि हम आपके यहाँ एडमिशन चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं, और अब हम उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस कंडीशन में हमारे गोविंद रहते हैं, गॉड रहते हैं.
0: सो इट्स रिक्वेस्ट ऑफ द सोल दैट आई वांट टू लिव इन दैट कंडीशन, आई वांट टू लिव इन सच अ वे लाइक अ गॉड इज लिविंग.
1: इसके बाद में फाइनल एमए की परीक्षा होती है एक ही आदमी के लिए, वो क्या है, ज्ञान की भूमिका.
0: So the MA, the master degree, is the index of knowledge. It's the last one, or introduction to knowledge.
1: उसमें सात पुस्तकें हैं. उसमें सात पुस्तकें विद्यमान की गई.
0: Seven books.
1: उसमें पहली books क्या है? सुविच्छा. क्या है भैया? सुविच्छा क्या है? बोलो गुरुजी. अब मैं आपके पास ही रहूंगा, रह लेना हम काम आना.
0: फर्स्ट बुक इज स्वइच्छा और द ओन डिजायर एंड यू से गुरुदेव आई वांट टू लिव विद यू.
1: अच्छा अब आपको तो हम एक मीडिया बना रहे हैं. अच्छा अब बोलो गुरुजी,
0: गुरुजी
1: मेरे विचार आपके विचारों से मिल रहे, ले ले संन्यास.
0: द सेकंड वन इज ओ गुरुजी आई थिंक द सेम लाइक यू एंड गुरुजी सेज ओके देन टेक संन्यास.
1: जब साधक शिष्य का विचार गुरु से मिलता है उसको कहते हैं विचारणा. उसको क्या बोलते हैं?
0: विचारणा.
1: उसको विचारणा बोलते हैं.
0: विचारणा मींस थिंकिंग. इट्स लाइक व्हेन योर थॉट्स एंड गुरुस थॉट्स आर इक्वल, यू आर थिंकिंग लाइक योर गुरु.
1: तन मानसा. इसके बाद में जो है पुस्तक है तन मानसा. गुरु से जब विचार मिलता है तो जैसे बड़ी टंकी में से पाइप में से पानी आकर घर की छोटी टंकी में आने लगता है, ऐसे ही गुरु का ज्ञान शिष्य में आने लगता है. इसलिए उसको तन मानसा बोलते हैं, यानी कनेक्शन, बड़ी टंकी से छोटी टंकी में कनेक्शन.
0: सो द नेक्स्ट वन इज तन मानसा. व्हेन द गुरु द नॉलेज ऑफ द गुरु स्लोली स्टार्ट्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्मॉल पोर्शन ऑफ शिष्य ऑफ डिसिपल.
1: सत्वापत्ति. अब चतुर्थी जो है ज्ञान भूमि सुविच्छा स्यात्, प्रथमा समुदायता विचारणा, द्वितीय स्यात् तृतीया तनुमानुसा, सत्वापत्ति चतुर्थी स्यात्, पंचमा संस्यात्मका, पदार्थ भावनी षष्ठी, सप्तमी त्रियगास्मृतम. तो चौथी जो भूमिका है, चौथी पुस्तक है, उसके कारण गुरु में और शिष्य में जो है एकता, एक आकार, एक अभिव्यक्ति और एक विचारधारा बन जाती, उसको सत्वापत्ति.

0: Sattvapati is the next step when in guru and disciple there is no difference in their thinking and everything.
1: Padartha bhavani kehte hain. Padartha bhavani. जैसे आपको चाय याद ही नहीं आवे, कॉफी याद ही नहीं आवे, चटनी याद ही नहीं आवे, रसगुल्ला याद ही नहीं आवे, आइसक्रीम, फिर 15-15 इंजेक्शन.
0: So the next step is when you even don't remember, you know, neither any sweets or anything, any food you like, there is nothing there.
1: पदार्थाभावनी का अर्थ ये है कि आपके सामने स्टोन हो और आपके पास में जो है गोल्ड हो, इस दोनों को आप बराबर समझे, इसको पदार्थ अभाव नहीं बोलते.
0: पदार्थ अभाव, the detachment from the anything is like you can have a stone or you can have a gold for you, this is equal.
1: नहीं, पहले असंशक्ति. असंशक्ति ये है, असंशक्ति इसको कहते हैं कि कभी कोई रिलेशन में आपके मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, वाइफ हैं, चिल्ड्रेन हैं, कोई भी है, इनमें आप गुरु को छोड़कर इनमें आपके मन का नहीं जाना, उसको बोलते हैं असंशक्ति.
0: असंशक्ति इज व्हेन यू डोंट थिंक एंड देन यू गो बैक टू योर फैमिली, टू योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन.
1: अब तो हमारा एक ही नारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा.
0: There is only one thing I know, there is nobody of mine and I am nobody's.
1: पदार्था भावनी, जहां सोना मिट्टी बराबर लगे, कोई भी उपलब्धि, कोई भी प्राप्ति, संसार संबंधी जो अपने को प्रभावित नहीं करती हो, उसको शास्त्र ने असंशक्ति कहा.
0: So only after you get detached for your family and so on, you can come to this detachment from the things from this world, like gold and all these things.
1: हमारे भागवत में श्रृंगी ने साफ दिया था, परीक्षित को तक्षक काटेगा, और लास्ट में तक्षक आया फणा उठा करके, लेकिन परीक्षित डरा नहीं. आप डरोगे जब कोई आएगा, ईयर, वो क्या नाम बोलते उसको,
0: सांप, सांप, स्नेक,
1: स्नेक, वो आएगा तो आप बैठे रहोगे कि भाग जाओगे.
0: सो लाइक इन द इन भागवत देयर इज दिस कर्स ऑफ किंग.
1: इसको पदार्थाभावनी बोलते हैं कि किसी से भी हमको खतरा महसूस न हो, डरने लगे. और कृष्ण भगवान ने कहा, नैनम छिंदंति शस्त्राणी, नैनम दहति पावक, नचेनम क्लेदंति आपो, न शोषयति मार्ग. आपको शस्त्र नहीं काट सकता, पवन नहीं उड़ा सकता, पानी आपको जो है भिगा नहीं सकता है, हवा आपको उड़ा नहीं सकती है, ऐसा आपका स्वरूप है. उसमें स्थित होने का नाम है पदार्थाभावनी. उन पदार्थों का आप पर कोई प्रभाव नहीं, उसको पदार्थाभाव नहीं बोलते हैं.
0: सो दिस इज दैट बुक पदार्थाभाव. देर इज नो फियर ऑफ स्नेक्स, देर इज नो फियर ऑफ डेथ, देर इज नो फियर दैट फायर विल बर्न यू, यू विल ड्राउन इन द वॉटर, दैट एनीथिंग विल हैपन विद एनी एलिमेंट. सो दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म.
1: तुरिया अवस्था उसको कहते हैं जब आपके चारों तरफ सामग्री पड़ी हो, वस्तु पड़ी हो, सब कुछ जितना भी संसार में वो पड़ा हुआ हो, और आपकी उसके प्रति कोई आप में कोई अट्रैक्शन या कोई वृत्ति या कोई वर्क आप उसमें नहीं करते हो, तो उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं.
0: एंड देन आफ्टरवर्ड्स इज तुरिया अवस्था द प्लेस और द mind state when you have anything around you and then you don't want to do any work in that, it doesn't attract you.
1: इस प्रकार से जिसने स्टार्ट किया गुरु जी से, इस प्रकार से उस व्यक्ति को सारी क्लासें और सारी पुस्तकें तैयार करके लाइफ में पास होना चाहिए और गुरु गोविंद को प्रसन्न करना चाहिए, गुरु गोविंद को विश्वास में लाना

0: चाहिए और गुरु गोविंद को ये एहसास कराना चाहिए कि आपने जो हमारे साथ मेहनत की वर्क की वो हमने सफल कर दिया.
1: सो इन आवर लाइव्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वी हैव टू पास ऑल दिस टेस्ट्स एंड वी हैव टू कन्विंस द गुरु एंड गॉड that we did, and then whatever you invented in us, whatever you effort you put in us, it was successful. So we passed all these exams. This Acharyaji is telling to us that we should success, we should successfully pass all Vishwaguruji's tests or effort what he gave. We should fulfill all his wishes.
0: पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति.
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय. देवदी देव देवेश्वर महादेव की जय. इंद्रदान सम्राट महाराज नंजी भगवान की जय. राजगुरु महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर शोकनंद भारती जी महाराज की जय.